0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: 6.9 इंच को शानदार डिस्प्ले, एआई पावर्ड कैमरा, 2 वर्ष को वारंटी सहित रेडमी A7 मा 5200 mAh तथा रेडमी A7 प्रो मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।
1: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वेक्सी 2.7 मेगाहर्ज।

नेपाल पे क्यू आर में आवत हुई क्लग आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग एप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट एप मन से नेपाल पे क्यू आर में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यू आर नेपाल के अपने क्यू आर।

0: सँगै नेपाल पेटीबारमै आबद्ध क्विक लक आज आफ्नो ब्याङ्क वित्तीय संस्था चाहे वालेटमै सम्पर्क गरी मोबाइल ब्याङ्किङ एप वालेट कनेक्ट आइपीएस ओ इन्टरनेसनल पेमेन्ट एप मनसे नेपाल पे क्युआर मे सहजिल से भुक्तानी पाए नेपाल पे क्युआर नेपाल के अपने क्युआर
1: रेडियो रेडियो
2: भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ज
3: Extreme energy drink.
4: Time check. Aile thik 10 baje ko cha.
5: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: तो छैन यार।
1: शहर में भीड़ छ मान्छे अकेला, टेंशन गर्मी ठेलम ठेला, हर कोई जिंदगी से धकेला, सानो बात मा ठूलो झमेला।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: hello. Let's go.
1: 6.9 inch ko standard display, AI powered camera, 3 barsha ko warranty sahit. Redmi A7 ma 5200 mAh tatha Redmi A7 Pro ma 6000 mAh powerful battery ko saath thap atyadhunik vishesha haru le tapai ko man jitcha barambar.
2: Aba sunnuhos Sri Steel's radio katha bhag 2. सर्वजी को परिवार सब डरा तर तीन ठूल भूकंप आएर हल्ला घर इसी नीन महीना वर्ष बीत एक दिन फिर अचानक ठूल भूकंप आएर त्यो श्री एफ ई 550D ले बनाए सर्वजी को घर झन धे हल्ला रेडियो सुंदर अब बाकी कथा अर्क भाग में श्री एफ ई 550D सर्वोत्कृष्ट भूकंप प्रतिरोधक स्टील
3: रेडियो भेरी एफएम रेडियो भेरी एफएम
4: रेडियो भेरी एफएम 98.6 / 102.7 मेगाहर्ट्ज
5: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 1 बजेको छ
6: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक Taste the difference. Feel the energy.

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: रेडियो रेडियो
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 रेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज़
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 2 बजे को था
4: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: नेपाल पे क्यूबार में आवत हुई क्लग आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग एप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट एप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।
1: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा भाग दुई। शर्माजी को परिवार सबै डराएका हुन्छन् तर त्यति ठूलो भूकम्प आएर हल्लाएको त्यो घरलाई केही हुँदैन। यसरी नै दिन महिना वर्ष बित्दै जान्छ अनि एक दिन फेरि अचानक ठूलो भूकम्प आएर त्यो श्री एफई 550D ले बनाएको शर्माजीको घरलाई झन धेरै हल्लाउँछ। रेडियो सुन्दै गर्नुहोस् अब बाँकी कथा अर्को भागमा श्री एफई 550D।

0: 6.9 को शानदार डिस्प्ले, AI powered कैमरा, 2 वर्ष को वारंटी सहित, Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh powerful बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।
1: सबैको मन सुने।
2: रेडियो भेरी FM।

0: संगे
1: नेपाल पे क्यूआर में आवत हुई क्लॉक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाह वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर

संगे नेपाल पेक्यूबार में आवत हुई क्लग आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पेक्यूबार में सहजील से भुगतानी पाए नेपाल पेक्यूबार नेपाल के अपने क्यूआर।

करेंगे। नेपाल पे क्यू आर में आवत हुई क्लॉक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाह वॉलेट में संपर्क करी। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यू आर में सहजील से भुगतानी पाए। नेपाल पे क्यू आर नेपाल के अपने क्यू आर।

नेपाल पे क्यूआर में आवत हुई क्लर्क आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाह वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजील से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

भूतगणातिसेवितं तपितजम्बो फलचारुभक्षणं कुमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं मङ्गलं भगवान् विष्णु।